गम मजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिन तो गर्मी दिपे माम अगर दुखा दर समाज वाय खुरी जो बाल